सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिक्का नू सिक्की दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान पुरसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सार साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगा।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकण साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नवाणियां दे मान नेताणियां दे ताण नेउटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जिया आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु

शबद चौंकिन सोदारन रहरास साहेब जी देन पाठ जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद हो।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक ही उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविए, एहन सुसहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो। सर्ब सुख हर नाम वडाई, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया चे धर्म दूर करमी आपो अपनी।

0: मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गौर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता थर्त महत, दिवस रात दोयदाई दाया खेलै सगल जगत, जंग आईया बुरियाईया वाचे धर्म हदो, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गई मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल, जिनी नाम ते आया गई।

कह ना सकत के। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमतोज कहि जय। कोट इंद्र इंद्रान सहे सहान गन जय। रे भवन महीप सुर नर सुर नेत नेत बंत्रण कहत तब सर्व।

चक्की चक थलवार वाले बहुत अनन लटू मदानी आयन गाहा पंखी पहुंदिया लेना सा सुए चाड़ पहिए जंतनान पहुंदिया गंतनांत बंदर बंद पहिए सोए पया कीर्तन नचाए सब कोए नच

0: पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ परिये साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड़िए खाद पड़िए जते बरस बरस पड़िए जते मास पड़िए जति आर जा पड़िए जते सास नानक लिख एक गल होर हो मैं चखना चाख महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु पेकिया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अनना खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्तर ना पैरे अनस कहरे मोन बगूता क्यों जागया गुरबिन सूता पग पिताना है अपना किया कमाना अल मल खाई सिर छाई पाई मूर्खंदे पत गवाई मेरे नामे किस्ता है ना पाई रह बेबानी मड़ी मसानी अंद ना जाने फिर पछतानी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसिया देसे तीने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी पक्ति तरी मन पाम दी।

सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखा कूड़ डोबे पूर, नानक विखाने बेनते तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।

0: मूरख पंडित हिकमत जुत संजय करे प्यार धर्मी तर्म करेगा बावे मंगे मोख द्वार जति सदा वह जुक्त ना जाने छट बहे करबा सबको पूरा आपे हो वह घटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
1: वदी सुवजग नानका सचा वेखे सो

0: करता करे सो हो
1: कै जात न जोर है अगे जियो न वे जिनकी लेख है पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तोर कनु

रोग प्याजा सुख कामना होई तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला पर पूर रहया तू सच्चा साहेब सुरत सवालो जिनकी दिसो पार पया कहो नानक करते कियां बातां जो किस करना सो कर रहया महला दूजा।

खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर सम्मानो आज जोनी संभवयो सुजस कल कवियन बखाण्यो गुर नानक अंगद वरयो गुर अंगद अमर निधान गुर रामदास अर्जुन वरयो पारस परस प्रमाण साध जीवन अर्जुन अमोल आजोनी संपो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंपो अगह गैन परम प्रांत दैन शीतल सुख दातो असंभो उद्वयो पुरख पूरण विदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर पा

आदि पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भूमंडल छायो पारस परस

सगल सृष्ट लग बेतरो ते जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यों अपर परम पर पुरख स्यों प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाहीं और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर

अंत न पावत देव सभै मन, इंद्र महाशिव जोग करे। हुन वेद बरंच विचार रहो, हर जाप न छाड़ियो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत

सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पातिसा माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातिसा सिर साह दसा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सत

0: जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताहे। सात जुग रात संतोख का धर्म ग्रथवा हो, तेरे देरात जद का जोर अग्रथवा हो। द्वापर रथ तपे का सात ग्रथवा हो, कल जुग रथ गण का कूड़े अगे रथवा हो। महला पहला
1: राम कहे से तंबर स्वामी, सत में अच्छे साथ रहे, सबको सत समावेर करे अपर पूराम नाम। देवा में सू नाय ले प्रच जयनान को मुखंतर पाए, जुज में जोर छली चंद्रावल। पान किसम जात भया पार जात गोपी ले आया, बिंद्रा बन में रंग किया कल में, वेद तर्म हुआ नाउ खुदाई लो पया। नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क ठाणी अमल किया, चारे वेद होए सचार, पड़े गुणे तिन चार विचार। पाओ भगत करनी सदाए, तो नानक मुखंतर पाए। पौड़ी

0: सिमल रुख सरारा अत दीर्घ अत मच ओए जे आवे आस कर जाहि नरसे कित फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिठ तिनी वी नानका गुण चंगियां तत सब को नवे आप को पर को नवे न कोए है तर तराजू तो लिए नवे सगोरा हुए अपराधी दुना मृगा है शीस निभाए है क्या थी है जार देख सुदे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या।

0: स्नान का जो घन चले पाए चौकड़ मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण किया ओह मुआ ओह चढ़ पया वेत गा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गा लख ठगियां पैना मियां रा दिन जिना तक पाओ कतिया बमन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होय पुराना सुटिया पी फिर पाए हो नानक तग न टुटई जे तक हुए।

0: दर पाई है तगना तू टसपूत महला पहला
1: तगना इंद्री तगना नारी पलके थोक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना खीवे तगा आपे वत्ते वड़ता गया वरा कत्ते ले पहाड़ करे बिया हो कड़का गल दसेरा सुन वेखो लोकां इहो वेड़ा मन अंधा नौ सुजान पौड़ी।

0: दयाल कृपा करे ता साईकार कराए सी सो सेव सेवा करे जिसनो हुक्म लाए सी हुक्म न होए प्रमाण ता किस मैं का मेल पाए सी खज मैं पावे सो करे मन चिंदा सो फल पाए सी तादर गह पैदा जाए सी तादर गह पैदा
1: कहो पंड।

0: कहे से तंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे, सबको सच समावे। ऋग कहे रहया पर पूराम नाम देवा मैं सू नहीं लय प्रच जय नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान किसन जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया। कल मैं बेद थर्मन हुआ नाव खुदाई लो पया नील बस्तर ले कपड़े पैरे तुर्क पठानी मिल किया। मानस खाने कर निवास श्री वगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना प्यावे ओई रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़या भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई
1: नील बस्तर प्रमाण मलेश
0: ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करें मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाई पड़ी।